तक दिन नम तद को तक जन को गुप तक तक गुप तक तक तद दिन को तक जन को तद दिन कर तक तद दिन तंग तद दिन तंग तद दिन न तंग कर तक तद दिन न तंग तद जन तक दिन नम तद को तक जन को गुप तक तद दिन को तक जन को तद दिन दान दान तक ते तक ते तक ते दक तक तक ते न दान दान तक ते तक ते तक ते दक तक तक ते न तक ते दिम दिम तक ते तक ते दिम दिम तक ते तक ते दिम तक ते दिम तलांग चोम कर तक कर तुम तलांग चोम कर तक कर तुम तलांग चोम कर तक कर तुम तक कि तत जम तक दिमि तक कि तत जम तक दिमि तक कि तत जम दिमि तत तरिकेट तक तक तत जम तरि तत तरिकेट तक ताकु त जम दरिता तक जम तरी तक ते तक जम दरी तम तम तक जम दरी तम तम तक के तम तक दिमे तारिकु धनकु धनकु जनकु गिनकु तोंकु पुंधरी कर तक कर तुम त्रिकु ताक ताक त्रिकु ताक त्रिकु ताक त्रिकु ताक ताक त्रिकु ताक त्रिकु ताक त्रिकु ताक ताक त्रिकु ताक त्रिकु ताक तारिकु तुम तक दिन तक के तक जन तक के तक दिमे तक के दि तांकु तक तारिकु तक ता तक दि तांकु तक तारिकु तक ता तक दि तांकु तक तारिकु तक ता तक दिम तक तक तक दिन तारिकु तक त्रिकु ताक ताक त्रिकु ताक त्रिकु ताक तारिकु तुम तक दिन तक के तक जन तक के तक दिमे तक के दि ता तक दिन नम तदिको तक जनको कुप तक टकुप तक ट तद दिन को तक जनको तद दिन कर तक तद दिन तंग तद दिन न तंग कर तक तद दिन न तंग तद जन तक दिन नम तदिको तक जनको कुप तक टकुप तक ट तद दिन को तक जनको तद दिन दान दान तक ट तक ट तक ट देक तक तक दिन दान दान तक ट तक ट तक ट देक तक तक दिन तक दिम दिम तक ट तक ट दिम दिम तक ट तक ट दिम तक ट दिम तलांग चोम कर तक तक तुम तलांग चोम कर तक तक तुम तलांग चोम कर तक तक तुम